0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार, ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH Network, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नाइट।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: स्टॉक मार्केट से लागू टैक्सेस में तब्दीली न करण जो फैसलो, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों ते सेल्स टैक्स की शरह में 25% ताईं वाधे जो इम्कान, हाइब्रिड गाड़ियों ते टैक्स की पुरानी शरह बरकरार रहंदी, रिवायती 12 ते हलंदड़ गाड़ियों ते कार्बन लेवी लगाने की तजवीज, मकामी सतह से तैयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियों थियण की उम्मीद। वफाकी बजट में 220 अरब रुपयनि जा नवा टैक्स लॻाइण जी तजवीज़, पेट्रोलियम शयुनि ते फेडरल एक्साइज, स्टील सेक्टर जे लाइ टैक्स निज़ाम आणण, ॿारनि जी फार्मूला खीर, केचअप, गिहु, काजू, तेल, चांहि, पती, खंडु, खु़श्क खीर ते सेल्स टैक्स जी वसूली जे लाइ क़ीमतूं प्रिंट करणु लाज़मी करार।

0: ऐं कंधकोट में एसटीपी पारां चंड जाम पुलिस ऐं कश्मीर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज घंटा घर चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। अखबारनि मूजिब ॿ महीना अॻु अब्दुल जब्बार सब्ज़ोई खे कंधकोट पुलिस गिरफ़्तार करे चंड जाम पुलिस हवाले कयो हो। चंड जाम पुलिस अब्दुल जब्बार सब्ज़ोई खे कूड़े मुक़ाबले में मारे छॾियो। कानून खां मथां क़तल करे पुलिस नाइंसाफ़ी कई आहे। अब्दुल जब्बार सब्ज़ोई मथां को बि केस दाख़िल न हो, इंसाफ़ कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, जीए एफएम 90.4।
6: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: Sindh ke
5: yasoon hatun ji sona, yasoon hatun ji sona, rehni na sadai jazbaat ke hamesha mukh te rakhan chhade de, chhadnu a de sab ke chotho kari vadai. छड़णू आ दे सब के छो थो करी वडाई घारियूं बई था गज्जी मुहणो मटण छड़े दे बरकत न थो गलहाई इल्जाम पो छड़े दे बरकत न थो गलहाई इल्जाम पो छड़े दे गेरन सा तू शिकायत मुहजी करण छड़े दे मुर्की गुजार जगमी तनहा रहण छड़े दे मोहब्बत करे सबिन सा नफरत करण छड़े दे GFM नेटवर्क प्रोग्राम आहे म्यूजिक मस्ती ए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती साण करे मा तवांजे पांजे मेज़बान गुलाब खान बहन तमुंजा मिठा सडणाऊ केड़ा हाल नवा जा ठीक है ते वे सही है वा जी उम्मीद रब करे तमा सब नी मुजन भारन ए बनेरो ना बिल्कुल खैर खैरियत कई हुंदी छोजो असा हमेशा अवां जे लाए दुआ घुरंदा आहियूं अल्ला ताला सदे तव्हांखे ख़ुशी आबाद रखे कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो अल्ला ताला तव्हांजी समूरियूं परेशानियूं दूर करे अल्ला ताला तव्हांजे घर में रिज़्क़ रोज़ीअ में बरकतूं अता फ़रमाए अल्ला ताला तव्हांजे ज़िंदगी में बरकतूं अता फ़रमाए जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि अल्ला ताला हुननि खे
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream. Glowing.
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
6: Mohammad Umar Bughyo Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Mirwa Road, Mir District Jail Defense City, Mirpur Khas.
7: Dariyae Sindh ki lehsan grama dama yeh hai.
5: ऐं हिन प्रोग्राम में हूंदी आहे तव्हां जे पसंदि जी चूंड मौसीकी मैसेज करण जो तरीक़ो तमामु सवलो आसान पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां खां 888-1 ते ऐं लाइव कॉल जो नंबर बि तव्हां सां मां शेयर कंदो हलां 0327-36-84-620 नंबर ते कॉल करे तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ऐं हुन खां अलावा इन ई नंबर ते व्हाट्सएप मैसेज ज़रिए बि तव्हां शामिल थी सघो था जेके वॉइस नोट करे ऐं असांजे नशो में शामिल थी सघनि था त वॉइस नोट करण जे लाइ बि इहो साॻियो ई नंबर आहे 0327-36-84-620 तव्हांजा वॉइस नोट जीअं ईंदा असां उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं हुन खां अलावा जेके तव्हां पैनल ते मैसेज कंदा त उन्हनि खे पैनल वारे मैसेजनि खे बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं

मुंहिंजा मिठा साईं, इंसान खे अल्ला ताला जे सभिनी मखलूकुनि मां अशरफ उल मखलूकात ठाहियो आहे। अल्ला ताला इंसान खे अकुल, शऊर, समुझ ऐं अहसास जहिड़ियूं वॾियूं नेमतूं अता कयूं आहिनि। हुननि ख़ूबियुनि जे करे ई इंसान ॿियनि मखलूकात खां मुमताज़ हैसियत रखे थो। पर रुगो इंसान हुजण काफ़ी न आहे, बल्कि इंसानियत जो आला क़दुरु अख़्तियार करणु ज़रूरी आहे। इंसानियत जो मतिलबु आहे ॿियनि सां मुहबत, हमदर्दी, रहम, इंसाफ़ ऐं भलाईअ वारो सलूक करणु। हिकु सुठो इंसान उहो ई आहे जेको पंहिंजी ज़ात खां वधीक ॿियनि जे भलाईअ बाबति सोचे, ग़रीब, मिसकिननि, यतीमनि ऐं ज़रूरतमंदनि जी मदद करे। इंसानियत जी वॾे में वॾी निशानी, अहिड़ा माण्हू समाज में इज़त ऐं एतराम हासिल कंदा आहिनि। इस्लाम बि इंसानियत जी तालीम ॾिए थो। हज़ूर करीम सलाहु वसलम इंसान सां मोहबत, शफ़क़त ऐं भाईचारे जो दर्स ॾिनो आहे। ऐं पाण करीम सलाहु वसलम फरमायो आहे त बहितरीन इंसान उहो आहे जेको ॿियनि जे लाइ वधीक फ़ाइदेमंद हुजे। तंहिं करे हर मुस्लमान ते फर्ज़ आहे त हू इंसानियत जे क़दुरनि खे पंहिंजे ज़िंदगीअ में अख़्तियार करे। अॼु जे दौर में दुनिया केतिरनि ई मसलनि जहिड़ोक गुरबत, नफ़रत, ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ीअ खे मुंहुं ॾेई रही आहे। उन्हनि मसलनि जो हल सिर्फ़ इंसानियत जे जज़्बे खे ई फ़रोग ॾियण में आहे। जेको हर माण्हू हिक ॿिए सां मोहबत ऐं एतराम सां पेश अचे त समाज में अमन, सुकून ऐं खु़शहाली पैदा थी सघे थी। इंसान जी अज़मत संदसि इंसानियत में ई आहे। जेको शख़्स ॿियनि जे ॾुख सुख में शरीक थिए थो न, मदद करे थो, भलाई जो पैगाम ॾिए थो, त उहो ई सचो इंसान आहे। असां सभिनि खे घुर्जे त इंसानियत जे जज़्बनि खे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो हिसो बणायूं, त जीअं हिकु बहितर, पुरअमन ऐं खु़शहाल समाज क़याम मुमकिन थी सघे। आफ़ताब परवीन जो ख़ूबसूरत आवाज़ प्रोग्राम जे आगाज़ में लॻायो आहे। तव्हां सां प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिया SMS। SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1

0: आपदा पर भी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समाधो त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां सां प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिए SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आसान पंहिंजे मोबाइल फोन जी राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं RO लिखो स्पेस टू स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते कॉलर जे तरफ़ हलंदासीं अस्सलाम वालेकुम अदा रेडियो जो आवाज़ त घटि कयो मुंहिंजा मिठा रेडियो जो आवाज़ त घटि कयो मुंहिंजा प्यारा भाउ
1: मुंहिंजा प्यारा भाउ घटि थी वियो
0: कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त तव्हांखे प्रोग्राम में कहिड़ी ॻाल्हि ख़ासि लॻंदी आहे दादा तव्हांखे प्रोग्राम में कहिड़ी ॻाल्हि सुठी लॻंदी आहे माशाल्लाह पंहिंजो नालो त तो कोन ॿुधायो केरु ऐं किथां ॻाल्हाईं पियो कीरियो किथां जो अदा दरगाह पीर शमीर मतिलब तव्हां मोरो खां ॿुधी रहिया आहियो न जी हा अच्छा हाणे इहो मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो कलाम ॿुधणु पसंदि कंदे ममताज़ मोलाई तव्हांखे खपे थो ठीकु आहे ममताज़ मोलाई तव्हांखे असां ॾियूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो ठीकु आहे अब्दुल मजीद कीरियो ठीकु आहे दादा ॿुधाए वठे न बाबा इहे छा लिखां मां थोरी हबीबला कीरियो ऐं ॿिया सभई तव्हांजा दोस्त जेके असांखे ॿुधनि पिया उन्हनि सभिनी खे तव्हांजे तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम ऐं वॾी महिरबानी आहे मिठा तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था ऐं शामिल थियण जो तरीक़ेकार सवलो आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते हिकु ॿियो कॉलर आहे हलंदासीं कॉलर जे तरफ़ अस्सलाम वालेकुम हैलो अस्सलाम वालेकुम हैलो हैलो अदा जो आवाज़ न पियो अचे त दोस्तनि खे चवंदासीं सिग्नल वारी जाइ ते बीह करे तव्हां असांखे कॉल कंदा कयो

मास्टर मंजूर जो खूबसूरत आवाज बादामी अखड़न वारा चांदी जे चपड़न वारा त मुझा मिठा साई जन जन हाई अस ज्वाइन किया तो उनके बुधाई हलो तो तुम बुध पे GFM नेटवर्क प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती से गांो मेजबान गुलाब खान भेण तुम प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम में शामिल थे टे तरीकेकार दसो तरीकेकार है तुम पैनल से मैसेज कर पैनल से मैसेज करने तरीकेकार सहलो है पाँच मोबाइल फोन राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो ए मारो लिखो स्पेस स्पेस का लिखो पाँच नालो पाँच गोठ या शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असा 888-1 ते अलावा बो तरीको है लाइव कॉल जो लाइव कॉल जो नंबर है 0327-3684-620 टो तरीको है व्हाट्सअप वॉइस मैसेज जो तुम व्हाट्सअप के जरिए असा वॉइस मैसेज कर सो उन्हें भी सागो नंबर है 0327-3684-620।

0: मास्टर मंजूर जी खूबसूरत आवाज में तवाजो सुंदर समा तू व्हाट्सएप ते भी अदन जा मैसेज अची रहा है पैनल ते भी मैसेज अची रहा है कॉलन मथा कालू भी आहिन पर वक्त थियो आहे ब्रेक जो हलंदासी ब्रेक की तरफ ब्रेक का वापस इंदासी वापस अची करे शामिल कंदासी तवाजा मोकिलियल मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेज आई खणदासी तवाजी फोन आई तवाजा कॉल आई उनजे लाय तव्हां छा कंदा केॾां बि न वेंदा ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM नेटवर्क ऐं हलूं था हिकु नंढड़े ब्रेक जी तरफ़
1: माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
3: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तो अस्सलाम वालेकुम दादा, जायद कड़े शहर का तहां लिखी रहे आयो, कड़े शहर का असा के बुझी रहे आयो, आई तहां जे दोस्तन जे नारा ब जेकर मैसेज कयो हो तो उन में लिखी छियो आ, तो तमाम सुठी गाल हुई। बहरहाल मेहरबानी मिठा जायद, तहां भी असने शो में शामिल थे आयो, तो एड़े ही तरीके सा तहां पैनल ते असन जे मैसेज में असन जे ब्या पैनल जरिए मैसेज करे असन शो में शामिल थी सकंदा। गोठ हाजी गुलाम खास करी लग छंडो मोरिया खा कुर्बान अली खास के लिए दा कुर्बान केड़ा हाल तई बाबा, ठीक आ तबियत सही थी उम्मीद अल्लाह ताला तोरे खैरियत कई होंगी। मेहरबानी मिठा तू असा शो में शामिल थो आया, लख कुर्बान तुझा असो भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम कमला इरशाद राम कोटड़ी मोहम्मद कबीर, मैं आपका फैन हूँ। मेहरबानी मिठा, वालेकुम असलम, तवे अस प्रोग्राम में भली कार चूं था, चवन था कि आप मेरे पसंद का सॉन्ग सुनाएंगे, छो न बुधाइंदे बाबा, तहे लाइ वेठा आये पसंद जो शो है, पहरों दफो मुझे शो में शामिल थे, जरूर तक बुधाइंद अदा जी फरमाइश है। मुझे बशीर जटो जो कलम बुधा अदा जी तो बोल दसियान वो कलम मुझे मुझी लाइब्रेरी में न मिलो है। बहरहाल बशीर जटो जो ढो जबरदस्त सॉन्ग है, वो तव सभी की नजर कदा हल्दे, उनखा अलावा असा शो में असा सा गड है अदो कड़ो अदो है, चवे तो असलम वालेकुम, त वालेकुम असलम भा, नालो लिखो हाँ तो तमाम सुठी गाल हुई, मुख्य भी तहसा मुखातिब थियण में आसानी थी वे, मजो अची वे, मेहरबानी है मिठा, तुम शो में शामिल थे आयो, लख कुर्ब लख एहसान अवहां जा। कॉलर भी असा सा गड आए, हलूं था कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, अदा छाल
2: अल्लाह जे करम, अदा केर किथा का
3: शमन अली सोलंगी कमर दिन चांडियो खांदा,
2: कमर दिन चांडियो खां अदा शमन, केड़ा हाल थई, ठीक है ई
3: अला शुक्र
2: सर, तुम
3: खुश
2: आयो, शुक्र अलहमदुल्ला अला एहसान, तुम अस मोरो एफएम बुधा आयो,
3: जी जी बिल्कुल, वे शौक से बुधा आये, शौक पाए एफएम अच्छा,
2: मोस्ट वेलकम, हलिया अचो बाबा, अस ऑफिस जहा दरवाजा सभी के लिए खुलल है, तक केर चले अचो
3: सर,
2: हूं
3: तो आया पर प्रोग्राम कर चाहूँ,
2: ठीक है, जडे भी का अड़े किस्म की अस तव रेडियो बुध आयो तो अड़े किस्म की एडवर्टाइज हलंदी, तो हलिया अचो जैसे इंटरव्यू कॉल थे तो अची सको को मसलो को अस चाहूं था असे नौजवान के प्रोमोट क्यों हमेशा जीएम और एफएम 88 या जीएफएम नेटवर्क, यही तो कोशिश कई है तो पांजे नौजवान के प्रोमोट करे। अच्छा तक हि अस शो क्या लगन है?
3: तमाम मजेदार लगे,
2: जुमे ते भला बुध ही हाँ, चंगो भला ठीक है, हाँ इन आए तो पांजे दोस्तन के शामिल कर भला,
3: जी मुझे नंढड़ा है ना शहजादो आई समीउल्ला आई नसरुल्ला, समीउल्ला नसरुल्ला आई हसीबला,
2: ठीक है वडी मेहरबानी जी जी, अदा बुधायो अगर शमन बुधी रो है न, मुख्य अदा बुधो, अगर इन वक्त शमन बुधी रो है मुख्य तो उनके अस चवे बाबा मेहरबानी कर कावड़ छदे दे, दुनिया आरजी आ खबर को केदमल मथा मलाइक की बीहे चवे अस्सलाम वालेकुम हलूं था गड, इन का बेहतर आ बाबा कावड़ियों खत्म कर, पान में ठही वनो, पान में मिलो, पान में मोहब्बत इख्तियार कर, अगर तहसा ही ठही वे न तो पो ताम के पैनल ते मैसेज करे जरूर बुधाजो बुधाजो, ठीक है दा,
3: बिल्कुल
2: वरी मेहरबानी,
3: ठीक है।

बशीर जी तुंहिंजी ख़ूबसूरत आवाज़ ईंदा वञे सुंदर समाधू त मीठा वक़्तु थियो आहे नंढी कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मैसेजिस व्हाट्सएप मैसेजिस ऐं रिसीव कंदासीं तव्हांजी कॉल्स तेसि ताईं तव्हां कहिड़ा बि न वेंदा ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM नेटवर्क।

0: टेंशन छोड़ो, सुनो GFM 88 मोरो, मोरो की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरद एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: त प्रोग्रामी हलूं था पैनल ते आयल मैसेजनि जी तरफ ॾिसूं था कहिड़नि ॿाहिरनि असां सां मैसेज कयो आहे। अदा गुलाम मुर्तज़ा बलोच पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, चवे थो सलाम या अली मदद। वालेकुम सलाम मौला पाक अली मदद, महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। चवे थो अदा मुंहिंजी कॉल त अटेंड कयो, सरकार इलाही ॻाल्हियूं आहिनि, मोबाइल फोन ई हैंग थी वई आहे ऐं ख़बर न आहे तव्हां कहिड़े नंबर तां असांखे कॉल करे रहिया आहियो। तव्हांजो नंबर सेव असां वटि थोरी आहे मुंहिंजा मिठा, ऐं उन खां अलावा ॿियो नंबर तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधायां, समूरा कॉलर्स असांजे लाइ हिकु जहिड़ा आहिनि। तव्हां समेत जेके बि असांखे कॉल कनि था उहे सभई असांजा भाइर या भेनरूं असांजे लाइ सभु हिकु जहिड़ा आहिनि। त जंहिंजो बि भाग जंहिंजो नंबर हूंदो उन वक़्तु मां उनजी कॉल अटेंड करे वठंदुमि, पोइ जेकर उहो तव्हां हूंदा त बि तव्हां ख़ुशि नसीब आहियो, जेकर को ॿियो हूंदो त उहो बि ख़ुशि नसीब थी सघे थो। महिरबानी आहे अदा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, ऐं उन खां अलावा जेके ॿिया असांजा भाइर पैनल जे ज़रिए असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघनि था त उहे मैसेज कनि असांखे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञनि, एम आर ओ लिखी स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 8881 ते। उन खां अलावा लाइव कॉल जो नंबर तकरीबन दोस्तन नोट करे छॾियो आहे, वॉइस मैसेजिस बि आहिनि त वॉइस मैसेज जी तरफ़ हलूं था, वॉइस मैसेज अधु हिकड़े कयो आहे, उनखे बि ॿुधी वठूं था।
1: ख़ुशि आहियो, ख़ैरास, तबियत सिहत ओके आहे, मां उमेदु थो कयां तव्हां जिते हूंदा ख़ुशि हूंदा, अलाह पाक जी रहमतुनि बरकतुनि जे साए में हूंदा। जी आऊं ॻोठु वलीदाद खान लुंड लॻे सिठाज खां मोहम्मद आहे लुंड, तव्हांजो प्रोग्राम म्यूज़िक मसीह लाजवाब आहे ऐं असीं ॿुधी रहिया आहियूं जीअं मेहरापुर FM 94 जे तवसुल सां, जेको स्टूडियो इंजीनियर जीअं मेहरापुर FM 94 जे मोहम्मद उमेर गौरी साहब जे महिरबानियूं आहिनि, जेके तव्हांजे शो खे या जेके बि शो हलंदा आहिनि उन्हनि खे कनेक्ट कंदा आहिनि। उन खां अलावा एहसान सयाल साहब बि आहिनि, जेके माशाल्लाह ज़बरदस्त सुठो ऐं बहितरीन जेको आहे सो ऑपरेटर आहिनि जीअं मेहरापुर जा, ऐं मोहम्मद उमेर गौरी बि ज़बरदस्त ऑपरेटर आहिनि। सलाम ॾींदासीं कुझु दोस्त आहिनि, ऐं उन खां अलावा असांखे कलाम ॿुधाइजो उस्मान फ़क़ीर सोलंगी जो, लॻी थो प्यार जे क़ाबिल भले महबूब माणा कर। नाज़ कबीर ख़ान सोलंगी साहब ॿुधी रहियो आहे तव्हांखे, ऐं उन खां अलावा जीअं मेहरापुर FM 94 जा जेके बि लिसनर आहिनि, सैद इमदाद अली शाह बुखारी साहब आहे, ज़वार मोहम्मद बच्चन शबाणी साहब आहे 186 खां, कापरान मैसर साहब आहे, ऐं जेके पहिरीं पहिरां ॿुधनि था सभिनी खे मोहम्मद ताहिर लुंड जे तरफ़ां सिक भरिया सलाम क़बूल पवनि।

0: 5 मिनट में अपना बैंक अकाउंट खोलो एंड गेट योर मशरिक नियो।
1: जी वफाकी बजट अॼु पेश कई वेंदी। बजट जी मंज़ूरी जे लाइ वफाकी काबीना जो इजलास कुझु देर में थियण वारो। पघारनि ऐं पेंशन में वाधारा 260 अरब रुपया मुक़ररु करण जो इम्कान। सोलर पैनल, स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शरह में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती ॿारनि ते हलंदड़ गाॾियुनि ते कार्बन लेवी लॻाइण जी तजवीज़। मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ जंग में कामयाबी माणण जी दावा करे छॾी। तहरान सां जल्द मुआदे ते सयूं थियण जी दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे मुआदे ते सयूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआदे ते राज़ी थी वियो आहे। सयूं यूरोप में थींदियूं। मुआदे ते सही वारी तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस शरीक थींदो। मुआदो थींदे ई आबन हरमुज़ बि मुकमल तौर खुली वेंदो।

अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि माहिदे खे हथ में शिकिल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सालसीअ में फाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे माहिदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त माहिदे जो वॾो हिसो तयार आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तेहरान रेड लाइन्स ते ठाह न कंदो।

वफाकी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां पेशावर जो दौरो। मोहसिन नक़वी सीएमएच पेशावर में दहशतगर्दनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल पाक फ़ौज जे ऐं एफसी जे जवाननि जी आयादत कई। मोहसिन नक़वी ज़ख़्मी अहलकारनि जे हौसले जी साराह कई ऐं क़ौम जा हीरो करार ॾिना। कंदकोट में एसटीपी जो टंडो जाम ऐं कश्मीर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। अब्दुल जब्बार सरदोई खे जुर्तू मुक़ाबले में मारण जो इल्ज़ाम। घंटाघर चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। अॻवाननि मूजिब ॿ महीना अॻु अब्दुल जब्बार सरदोई खे कंदकोट पुलिस गिरफ़्तार करे टंडो जाम पुलिस हवाले कयो हो। टंडो जाम पुलिस अब्दुल जब्बार सरदोई खे कूड़े मुक़ाबले में मारे छॾियो। कानून खां मथां क़तल करे पुलिस नाइंसाफ़ी कई आहे। इंसाफ़ कयो वञे। सखर जे गरम गोदी वारे इलाइक़े में ॿ ॿारड़ा कालरा विखे हयाती विञाए वेठा। ॿिनि सालनि जी निंगरी ऐं ॿिनि सालनि जो ॿारड़ो कालरा विखे फौत थी विया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदी निक एडो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niha Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: ख़िदमत वारा माण्हू ॿिया आहिनि अहिड़ो अॼु दरबान त कोन्हे हिकिड़ो आहियां चुप मां घारियां हिकिड़ो आहियां चुप मां घारियां गोड़ वॾो गुमसान त कोन्हे यार छॾे वियो जेकर सोणा यार छॾे वियो जेकर सोणा मूं को कयो अरमान त कोन्हे इश्क करणु आसान त कोन्हे

0: शामिल थी सको था। एसएमएस के जरिए एसएमएस करण जो तरीकेकार सवलड़ो आहे, आसान आहे। तकरीबन दोस्तन के इन एसएमएस करण जो तरीकेकार खबर आहे। उन खां अलावा तव्हां असांजे हिन शो में लाइव कॉल जे ज़रिए भी शामिल थी सको था। लाइव कॉल जे लाइ असांजो नंबर आहे 0327 36 86 620 0327 36 84 620। त कॉलर आहे हिकिड़ो, हलूं था कॉलर जे तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम सलाम भाई।
0: जी अदा साईं, केर ॻाल्हाए रहिया आहियो, किथां ॻाल्हाए रहिया आहियो?
1: मीरपुर खां हरचंद राय कॉलोनी मां।
0: मीरपुर खास खां ॻाल्हाए रहिया आहियो? मीरपुर खास वारे भाउ खे मां भलीकार चवां थो पंहिंजे हिन शो में। शो मुंहिंजो ॿुधंदा आहियो अदा? तव्हांजो आवाज़ दादा कटिजी वियो पियो अथव। तव्हांजो आवाज़ असांजे इलाही घटि पियो अचे, कटिजी पियो अथव। ठीकु आहे अदा, पंहिंजे दोस्तनि खे प्रोग्राम में शामिल कयो मुंहिंजा बेठा। अच्छा ठीकु आहे, वॾी महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो था। उनजे लाइ लख कुर्ब लख अहसान। तव्हांजे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, अचो तव्हांखे उहो मां ॿुधायां।

चमन अली मिराली जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातो त शायर चवे थो सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं मोब मुंहिंजे यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं हर घड़ी हू हुस्न ते अनाज थो निर्मल करे हर घड़ी हू हुस्न ते अनाज थो निर्मल करे दीद जे दीवार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं बेमिसल ऐं बेबहा थियो साथ उन जो उमिर भर बेमिसल ऐं बेबहा थियो साथ उन जो उमिर भर प्यार वारे प्यार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो करीं सूंह ऐं सिंगार जी तूं ॻाल्हि कहिड़ी थो

वक़्त जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हलंदासीं नंढड़ी ब्रेक जी तरफ़ ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजी लाइव कॉल्स ऐं तव्हांजा प्यारा प्यारा मैसेजिस।

0: अपना शहर अपना घर मोरो और मोरो की आवाज।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: और जदि माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

मेज़बान गुलाब खान भेण ही प्रोग्राम न सिर्फ मोरो स्टेशन बल्कि असाजे पूरे नेटवर्क तक ही वक्त ऑन एयर कयो वेंदो आहे जैमें सखर लाड़कणो मीर प्रकाश मटियारी मातली मेहरापुर मोरो शामिल हूं जिथा जहां लिसनर्स असाजे प्रोग्राम में शामिल थन्दा शामिल थियण जो तरीकेकार सवलो है आसान है एक तो मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एम आर ओ लिखो स्पेस जो स्पेस का लिखो पाजो नालो पाजे गोठ शहर जो नालो लिखी कर मोकिलो असा 888 से उनके अलावा तुम असाजे प्रोग्राम में शामिल थी सोता लाइव कॉल के जरिए 0327 3684 600 असाजो लाइव कॉल नंबर है इन नंबर से तुम कॉल कर असाजे प्रोग्राम में शामिल थी सोता उनके अलावा तुम इन ही सागे नंबर से वॉइस नोट या वरी मैसेज कर शामिल थी सोता काफी सारा तरीकाकार जैसा तांगे इजी लगे जेको तांगे आसान लगे तेरे दोस्त सा ना शेयर लिखी मोकिलो है चाहे तो वही फिर मुझे याद आने लगी है वही पहर फिर मुझे वही फिर मुझे याद आने लगी है जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं हटाने थी जो राह से दोस्तों की वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको ये कहने में मुझको जमाने लगे थे

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: भागो
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252578 6।
6: जी हाँ 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

सख्त सर्दी सख्त गर्मीअ जा ॾींहं हिन वक़्तु हली रहिया आहिनि. सख़्त गर्मी हिकु कुदरती मौसमी हालत हूंदी आहे, जेका ख़ासि तौर ते न जेके हीउ उन्हारे जा ॾींहं हूंदा आहिनि उन्हनि में महसूसु थींदी आहे. जॾहिं सिज जी तपिश न तमामु घणी वधी वञे थी ऐं गर्मी पद आम हद खां मथे हलियो वञे थो, त उन खे सख़्त गर्मी या हीट व्यू चवंदा आहिनि, जेको गुज़िरियल ॿिनि टिनि ॾींहनि खां वठी सिंध जे अंदरि तमामु ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहे. इन सख़्त गर्मीअ में माण्हुनि खे केतिरनि ई सिहत जे मसइलनि खे बि मुंहुं ॾियणो पवे थो, जंहिंमें जिस्म में पाणी जी खोट, थकावट, चकर अचणु, मथे जो सूर, हीट स्ट्रोक जहिड़ियूं बीमारियूं पैदा थियनि थियूं. ख़ासि तौर ते ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हुनि इन में सख़्त मुतासिर थींदा अथव. उन खां अलावा सख़्त गर्मीअ जा केतिरा ई सबब ॿिया बि आहिनि, जिन में मौसमी तब्दीलियूं, वणनि जी वाढी, माहौलियाती आलूदगी ऐं वधंदड़ शहरी आबादी शामिल आहे. वणनि जी घटाई सबब माहौल जो कुदरती तवाज़ुन मुतासिर थिए थो, जंहिंसां गर्मी पद में बि इज़ाफ़ो थी वञे थो. सख़्त गर्मीअ खां बचण जे लाइ ज़रूरी आहे त माण्हू घणो पाणी पीए, हल्का ऐं सोटरी कपिड़ा पाए, गैर ज़रूरी तौर ते सिज में निकिरण खां पासो करे ऐं वण पोखण जी मुहिम में हिसो वठणु घुर्जे. हुकूमत ऐं समाजी इदारनि खे बि घुर्जे त अवामी आगाही पैदा कनि ऐं माहौल जे तहफ़ुज़ जे लाइ असराइता क़दम खणनि. सख़्त गर्मी हिकु संजीदा मसइलो हिन वक़्तु अदा साईं थी चुको आहे असांजे मुआशिरे जो न, त उन जे लाइ एहतियाती तदबीरूं इख़्तियार करण सां गॾो गॾु इन सख़्त गर्मीअ खे मोह ॾियण जे लाइ असांखे वध खां वध वण बि पोखणा पवंदा. त हर माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो वण ज़रूरु पोखे, ज़रूरु पोखे. इन में न ई को घणो ख़र्चो थो अचे ऐं न ई वरी इन में को वधीक का तकलीफ़ ते अमल आहे. अहिड़ो कुझु बि कोन्हे को पंहिंजी सोच ऐं पंहिंजे वित मुताबिक़ हिकिड़ो वण लिम जो ज़रूरु काहींदा कयो, जेको हमेशा मां पंहिंजनि टोटल प्रोग्रामनि में ईअं चवंदो आहियां त वण ज़रूरु पोखियो, इहो असांजे लाइ तमामु घणो ज़रूरी आहे. इनशाह ताला हयाती रही त वरी ॿिए प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु हूंदासीं. ऐं वेंदे वेंदे हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग मुंहिंजी प्लेलिस्ट में मौजूदु आहे, उन खे प्ले करे वञा थो ऐं उमेदु कयां थो त तव्हांखे वध खां वध पसंदि ईंदो. अब्दुल सोलंकी जो आवाज़ आहे ऐं इरशाद जागीरानी जी शायरी. त ॿियो प्रोग्राम ॾेई ॾींदा इजाज़त. अलह वाही अलह निगहबान.

0: जरा जरा बात तो सुनो।
1: सत्र हज़ार 500 अरब रुपयनि खां वधीक जी वफ़ाकी बजट अॼु पेश कई वेंदी। बजट जी मंज़ूरी जे लाइ वफ़ाकी काबीना जो इजलास कुझु देर में थियण वारो। पघारुनि ऐं पेंशन में वाधा ऐं टैक्स रेवेन्यू जो हदफ़ 15,260 अरब रुपया मुक़रर करण जो इम्कान। सोलर पैनल, स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शरह में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती ॿारनि ते हलंदड़ लॻाइण जी तजवीज़। मकामी सतह ते तयार थींदड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी माणण जी दावा करे छॾी। तेहरान सां जल्द वाइदे ते सहियूं थियण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे वाइदे ते सहियूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर वाइदे ते राज़ी थी वियो आहे। सहियूं यूरोप में थींदियूं। सही वारी तकरीब में नायब सदर जे डी वेंस शरीक थींदो। वाइदो थींदे ई आबने हरमुज़ बि मुकी वेंदो। अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि वाइदे खे हतमी शिकिल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सासी में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे वाइदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत चयो आहे त वाइदे जो वॾो हिसो तयार आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तेहरान रेड लाइन्स ते ठाह न कंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां पिशावर जो दौरो। मोहसिन नक़वी CMH पिशावर में दहशतगर्दनि जे हमले में ज़ख़्मी थियल पाक फ़ौज जे FC जे जवाननि जी आयादत कई। मोहसिन नक़वी ज़ख़्मी अहलकारनि जे हौसले जी साराह कई ऐं क़ौम जा हीरो करार ॾिना। कंदकोट में SCP जो टनुजाम ऐं कश्मोर पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। अब्दुल जब्बार सब्ज़ई खे जुड़तू मुक़ाबले में मारण जो इल्ज़ाम। घंटाघर चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। अॻवाननि मूजिबि 2 महीना अॻु अब्दुल जब्बार सब्ज़ई खे कंदकोट पुलिस गिरफ़्तार करे टनुजाम पुलिस हवाले कयो हो। टनुजाम पुलिस अब्दुल जब्बार सब्ज़ई खे कूड़े मुक़ाबले में मारे छॾियो। कानून खां मथां क़तल करे पुलिस नाइंसाफ़ी कई आहे। इंसाफ़ कयो वञे। तख़ जे गरम गोदी वारे इलाइक़े में 2 ॿारड़ा कारला विखे हयाती विञाए वेठा। 5 सालनि जी नींगरी ऐं 2 सालनि जो ॿारड़ो कारला विखे फौत थिया।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, मालिक जो महबूब मोहम्मद को ने के खा।

मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद, सजन से पान दरूद बुधन था। यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं, वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त फरमाते

पता लगाएं ताकि बजाय उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबाज बुलंद मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबाज बुलंद है।

0: आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई, महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता
1: नहीं। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: नए माली साल के बजट में सालानी तरक्की की शरह 4% रखने की तजवीज़, सनअती तरक्की जो हदफ 4% रखने की तजवीज़ शामिल, मजमूई सिरकारी जो हदफ 15% रखने की भी तजवीज़, तरक्याती बजट 1000 अरब रखने की तजवीज़, बजट दस्तावेज़ मूजिब वफाकी वजारतुन जो तरक्याती बजट 682 अरब 48 करोड़ रखने की तजवीज़ शामिल, सेहत वाली वजारत जो तरक्याती बजट 16 अरब 6 करोड़ रखने की तजवीज़, वफाक तहत सूबाई तरक्याती मनसूबन के लिए 88 अरब 23 करोड़ रूपया रखने की तजवीज़ शामिल, हाउसिंग वाली वजारत के लिए 16 अरब 39 करोड़ रखने की तजवीज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ जंग में कामयाबी मानण की दावा कर छी, तेहरान से जल्द मायदे ते सही थियण की भी दावा। डोनाल्ड ट्रंप चवा तो ईरान के जंग में शिकस्त दई छी, हाँ मायदे ते सही थियणी आन। ईरानी सुप्रीम लीडर मायदे ते राजी थी वो है, सही यूरोप में थन्द मायदे ते सही वाली तकरीब में नायब सदर जे डी वेंस शरीक थन्द, मायदो थन्दे याब न हरमुज भी मुकम्मल तौर खुली वो। अमेरिका से अजा तई कें भी माहदे के हदमी शिकिल ना डी, पाकिस्तान कतर सारसी में फाल किरदार अदा कर रहा है, ईरान अमेरिकी सदर के माहदे से पहुंचने वाले खबरों के रद्द कर छो। ईरानी बड़े वजारत चवे तो माहदे का वो हिस्सों तैयार है, पर अमेरिका बार बार पैंती पोजिशन तब्दील कर रो है, अमेरिकी कदम सफारती अमल के मुतासर कर रहा है, तेहरान रेड लाइन्स से ठाह न कंदो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा पिशावर जो दौरों, मोहसिन नकवी सीएमएच पिशावर में दहशतगर्दन के हमले में जख्मी थियल पाक फौज के एफ सी के जवानों की अयादत कई, मोहसिन नकवी पारा जख्मी अहलकार के हौसले की साराह, कौम जा हीरो करार।

नवाबशाह भरिसां सौठन में ज़मीनी तकरार तां छेड़ो, फायरिंग में ब भाइर मारिजी विया, टे भाइर ज़ख़्मी। सकरन रोड ते लांडी स्टॉप वटि फायरिंग में 28 सालनि जो सरमद ऐं 18 वरनि जो असलान जमाली क़त्ल थी विया। गोलियूं लॻण सबबि टे भाइर फैसल, सऊद ऐं सलमान जमाली ज़ख़्मी, मरह ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल।

सखर जे गरम गोदी वारे इलाइक़े में ब बारा कालरावे खे हयाती विञाए वेठा। पंजनि सालनि जी निंगरी ऐं ॿिनि सालनि जो बारड़ो कालरावे खे फोत थिया। पिरालो में गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल बारड़ो अब्दुरहमान कुरेशी जुअर जे फसल मां बेहोशी वारी हालत में थे। निंगर खे ॻणितीअ जोॻी हालत में इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। वारसनि पारां निंगर ते तशदुद करे फसल में फिटो कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। जरवार में काज़ीबाह जे आबादगारनि जो पाणी ॾी खोट ख़िलाफ़ वलू महर में एहतजाज। आबपाशी अमले ते रिश्वत एवज़ मुंड वारनि आबादगारनि खे पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। आबादगारनि चयो आहे त आपाशी अमलो रिश्वत वठी असांजो पाणी विकिरो करे रहियो आहे। पाणी पुछड़ीअ ताईं पहुचायो वञे। छाछरो जे ॻोठ कागिया में पीअण जे पाणीअ जो सख़्तु बहरान। रहवासियुनि जो ख़ाली थांव खणी एहतजाज। ॻोठाणनि मूजिब 5000 खां वधीक आबादी पीअण जे पाणी जे लाइ सालनि खां परेशान आहे। पाणी फराहम कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: के हो तो आवाज भी सिंसी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

अरब रखण जी तजवीज़, रेलवे जे MLI मनसूबे जे लाइ 25 अरब रूपया रखण जी तजवीज़, मेमन देम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जे लाइ 26 अरब रखण जी तजवीज़, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइ 21 अरब रखण जी तजवीज़, दानिश स्कूल जे लाइ 22 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। नए माली साल जे बजट में सालानी तरक्की जी शरह 4% रखण जी तजवीज़, सनअती तरक्की जो हदफ 4% रखण जी तजवीज़ शामिल, मजमूई सीड़पकारी जो हदफ 15% रखण जी तजवीज़, तरक़ियाती बजट 1000 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि वफ़ाक़ी वज़ारतुनि जो तरक़ियाती बजट 682 अरब 48 करोड़ रूपया रखण जी तजवीज़ शामिल, सिहत वारी वज़ारत जो तरक़ियाती बजट 16 अरब 6 करोड़ रखण जी तजवीज़, वफ़ाक़ तहत सूबाई तरक़ियाती मनसूबनि जे लाइ 88 अरब 23 करोड़ रूपया रखण जी तजवीज़ शामिल, हाउसिंग वारी वज़ारत जे लाइ 16 अरब 39 करोड़ रूपया रखण जी तजवीज़, वफ़ाक़ी तालीमी मनसूबनि जे लाइ 36 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। फाइनांस डिवीज़न जो तरक़ियाती बजट 1 अरब 44 करोड़ रखण जी तजवीज़, दिफ़ाई पैदावार जे लाइ 97 करोड़ 98 लख रूपया रखण जी तजवीज़, सूबनि जे तरक़ियाती मनसूबनि जे लाइ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी माणण जी दावा करे छॾी, तेहरान सां जल्द मुआदे ते सयूं थियण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे मुआदे ते सयूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआदे ते राज़ी थी वियो आहे, सयूं यूरोप में थींदियूं। मुआदे ते सही वारी तक़रीब में नायब सदर JD वेंस शरीक थींदो, मुआदो थींदे ही अबनाए हरमुज़ बि मुकमल तौर खुली वेंदो। अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि वाइदे खे हतमी शिकिल नाहे ॾिनी, पाकिस्तान ऐं कतर सालसीअ में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे वाइदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत चयो आहे त वाइदे जो वॾो हिसो तयारु आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि, तेहरान रेड लाइन्स ते ठाह न कंदो।

नवाबशाह भरिसां सोटन में ज़मीनी तकरार तां छेड़ो, ब भाइर क़तल, टे भाइर ज़ख़्मी। सकरन रोड ते लांडी स्टॉप वटि फायरिंग में सरमद ऐं असलान जमाली क़तल थी विया। टे भाइर फैसल, सऊद ऐं सलमान जमाली ज़ख़्मी थिया। मक़तूलनि जे वारसनि चयो आहे त ॿई भाइर पेपर ॾियण जे लाइ यूनिवर्सिटी विया हुआ। कोर्ट ग़ुलाम मोहम्मद वेझो घरेलू तकरार तां भाइरनि में छेड़ो थियो, नंढे भाउ सां वॾो भाउ क़तल। जवाबदार अली लिगारी वॾे भाउ राशिद लिगारी खे कुहाड़ी जा वार करे क़तल कयो, जवाबदार फरार। सखर जे गरम गोदी वारे इलाइक़े में ॿ ॿार कालरा विखे हयाती विञाए वेठा। पंजनि सालनि जी निंगरी ऐं ॿिनि सालनि जो ॿारड़ो कालरा विखे पुत। मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा। दरबार में काज़ीबाह जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ वलूमहर में एहतजाज। आबपाशी अमले ते रिश्वत एवज़ मुंढ वारनि आबादगारनि खे पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। काज़ी अहमद में मीर रुकन शाख जी पुछड़ीअ में पाणी जी शदीद खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। छाछुर जे ॻोठ काग्या में पीअण जे पाणीअ जो सख़्त बहरान। रहवासियुनि जो ख़ाली थांव खणी एहतजाज। ॻोठाणनि मूजिबि 5000 खां वधीक आबादी पीअण जे पाणी जे लाइ सालनि खां परेशान आहियूं। पाणी फराहम कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी काबीना नए माली साल जी बजट जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि काबीना जो इजलास, पघारनि में 7% ताईं वाध थियण जो इम्कान। नाणे वारे वफाकी वज़ीर नए माली साल जी बजट क़ौमी असेंबली में पेश कंदो। बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट पहुचाया विया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त बजट महिनत ऐं सचाई सां तयार कयो वियो आहे। बजट अवाम जी फलाह वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वई आहे। वफाकी हुकूमत जूं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे परचाइण जूं कोशिशूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऐं ॿियनि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। गिलगित इलेक्शन ते ख़दशा ख़त्म करण जी ख़ातिरी पीपल्स पार्टी चयो आहे त बजट इजलास में सदन समूरा कुझ मेंबर शरीक थींदा। क़ौमी वफ़ादनि तहत बजट जो हिसो थींदासीं। नए माली साल जी बजट में सिंध जे अहम मनसूबनि लाइ घटि रक़म रखण जो इंकशाफ़। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि सिंध जे अहम मनसूबे सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाइ रुगो 30 अरब रखण जी तजवीज़। सिंध कोस्टल हाईवे मनसूबे लाइ बि 25 ऐं मेहरान हाईवे लाइ बि रुगो 21 अरब रखण जी तजवीज़। कराची बल्क वाटर सप्लाई मनसूबे लाइ बि 10 अरब रखण जी तजवीज़। रेलवे जे ML1 मनसूबे लाइ 25 अरब रूपया रखण जी तजवीज़। डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइ 26 अरब रखण जी तजवीज़। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइ 21 अरब रखण जी तजवीज़। दानिश स्कूल लाइ 22 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। नए माली साल जी बजट में सालियाने तरक़ीअ जी शरह 4% रखण जी तजवीज़। सनअती तरक़ीअ जो हदफ बि 4% रखण जी तजवीज़। मजमूई सीड़पकारी जो हदफ 15% रखण जी तजवीज़। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रखण जी तजवीज़। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि वफ़ाक़ी वज़ारतनि जो तरक़ियाती बजट 682.48 अरब रखण जी तजवीज़। सिहत वारी वज़ारत जो तरक़ियाती बजट 16.06 अरब रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ तहत सूबाई तरक़ियाती मनसूबनि लाइ 88.23 अरब रखण जी तजवीज़। हाउसिंग वारी वज़ारत लाइ 16.39 अरब रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी तालीमी मनसूबनि लाइ 36 अरब रखण जी तजवीज़। फाइनांस डिवीज़न जो तरक़ियाती बजट 1.44 अरब रखण जी तजवीज़। दिफ़ाई पैदावार लाइ 97.98 लख रूपया रखण जी तजवीज़। सूबनि जे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ 2218 अरब रूपया रखण जी तजवीज़। पंजाब लाइ 749 अरब ऐं सिंध जे मनसूबनि लाइ 706 अरब रखण जी तजवीज़। केपी जो तरक़ियाती बजट 455 अरब ऐं बलूचिस्तान जो 308 अरब तजवीज़। बरामदात जो हदफ 32.90 अरब डॉलर तजवीज़। वापारी ख़सारो 37.30 अरब डॉलर तजवीज़ कयो वियो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना GAFM 88 नेटवर्क।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बती का पैगाम। जी एफ एम सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते 0.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खनो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252576
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: वफाकी हुकूमत नए माली साल के बजट में कुछ नवा टैक्सेस लगाए छा, कुछ टैक्सेस में वाध त कुछ में वरी घटताई। सुपर टैक्स में घटताई की तजवीज, सालियानो 15 to 50 crore ताई आमदनी की 6 slab ते सुपर टैक्स खत्म कयो वियो। 50 crore का वधिक आमदनी ते सुपर टैक्स 10 मां घटाए 8% करण की तजवीज। 22 to 32 lakh सालियानो कमाईंदड़न लाइ इनकम टैक्स रा 23 मां घटाए 20% कई वही। 32 to 41 lakh आमदनी ते टैक्स की शराह 25% करण की तजवीज। 41 to 56 lakh कमाईंदड़ 29% इनकम टैक्स भरींदा। 56 to 70 lakh सालियानी आमदनी ते 32% इनकम टैक्स की तजवीज़।

नए दुकानदारन लाइ फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुस्तारफ़ सालियानो 20 करोड़ रुपियनि ताईं विकिरो कंदड़ दुकानदार फिक्स्ड टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे चयो त फिक्स्ड टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा करण वक़्त घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा। नए माली साल जी बजट में गाॾियूं वधीक महांगियूं थी वयूं। ॿाहिरां गाॾियूं घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो। 2,000 खां 3,000 सीसी ताईं GSUVs गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3,000 सीसी खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी विवाद। 2 करोड़ खां महांगियुनि इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई। इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल्स, ईवी रक्षाइन ऐं ईवी बसनि ते रियायती निज़ाम बरक़रार रहंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म में 17% इज़ाफ़ो कंदे 838 अरब रुपया रखी छॾिया। कफ़ालत प्रोग्राम खे 1,20,00,000 ख़ानदाननि ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे ॿुधायो त वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम लाइ 71 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। मिल्कियतनि जी मुंतकली ते लागू विद होल्डिंग टैक्स में घटताई जी तजवीज़। फाइलर लाइ मिल्कियत जी ख़रीदारी ते विद होल्डिंग टैक्स 28% मां घटाए 1.25% कयो वियो। फाइलर लाइ मिल्कियत जी विकरे ते बि विद होल्डिंग टैक्स 5.5% मां घटाए 2.75% करण जी तजवीज़।

0: वफ़ाक़ी हुकूमत परॾेही वेंदड़ अमीरनि खे वॾो रिलीफ ॾेई छॾियो। जहाज़ जे बिज़नेस क्लास में सफ़र करे परॾेही वेंदड़नि लाइ टैक्स में घटिताई। परॾेही में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करण ते लागू 5% विथ होल्डिंग टैक्स 2.5% कयो वियो। गैर मुल्की असासनि ते कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़तम करण जी तजवीज़। हुकूमत बिजली जे शोबे ऐं रोडनि जी तामीर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ बि पैसा रखी छॾिया। जयामीर बादशाह डैम लाइ 14 अरब, बहमद डैम लाइ 22 अरब ऐं दासू पन बिजली मनसूबे लाइ 15 अरब रूपया रखण जी तजवीज़। K4 मनसूबे लाइ 10 अरब रूपया रखिया विया। इन 25 खे डबल करण लाइ 100 अरब मुख़्तस। सखर हैदराबाद मोटरवे लाइ 30 अरब रूपियनि जी सीड़पकारी थींदी। ML1 लाइ 25 अरब रूपया रखण जी तजवीज़। नाणे वारे वज़ीर मूजिब 10 वॾनि शहरनि लाइ डिजिटल मास्टर प्लान तयार बि कया वेंदा। वफ़ाक़ी काबीना नए माली साल जी बजट जी मंज़ूरी ॾिनी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त अल्ला ताला जे फज़ल ऐं करम ऐं क़ौम जी दुआउनि सां माशी मज़बूती हासिल कई। हाणे खु़शहाली जो वक़्तु शुरू थी चुको आहे। माशी इस्तेहकाम सबबि अॼु हुकूमत बजट में अवाम खे रिलीफ फराहम कयो। ॾुखियनि हालतुनि में सब्र जो मुज़ाहिरो करण ते पाकिस्तान जे हर शहरी जो थोरायतो आहियां। हाणोकी बजट में अवाम जी रिलीफ भलाई ऐं इहा पघारदार तबिके ते भार घटण लाइ क़दम खया विया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट इजलास खां अॻु नाराज़ थियल पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे परचाए वरितो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी मुलाक़ात खां पोइ घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बिलावल भुट्टो खे परचाए ऐवान में वठी आयो। गिलगित इलेक्शन ते ख़दशा ख़तम करण जी ख़ातिरी इन खां अॻु बिलावल बजट इजलास में शिरकत न करण जो फ़ैसिलो कयो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shahla Gul Official.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज. GFM 90.4.

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पंजवीह सैकड़ो करण जी तजवीज़। इकतालीह खां छावंजाह लख कमाईंदड़ उनटीह सैकड़ो इनकम टैक्स भरींदा। छावंजाह खां सतर लख सालियानी आमदनी ते बटीह सैकड़ो इनकम टैक्स जी तजवीज़।

0: फिक्स्ड टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा कराइण वक़्तु घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा।
1: नए माली साल जी बजट में गाड़ियूं वधीक महांगियूं थी वयूं। ॿाहिरां गाड़ियूं घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो। 2,000 खां 3,000 सीसी ताईं जी SUVs गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3,000 सीसीअ खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटीअ में वाध। 2 करोड़ खां महांगियुनि इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स, ईवी रक्षाइनि ऐं ईवी बसनि ते रियायती निज़ाम बरक़रार रहंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे डी असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज
1: आवाज भी मातली की है।
0: सुन 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।